चक दे इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इस जबरदस्त गाने को हमने लिया था फिल्म चक दे इंडिया से, और शाहरुख खान इसमें नजर आए थे और उनके साथ इनकी हॉकी की टीम थी। ये तो फिल्म सभी को बहुत अच्छी तरह से याद होगी दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं 15 अगस्त के बारे में। 15 अगस्त 1947 की सुबह दिल्ली के रेड फोर्ट पर पहली बार तिरंगा झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे पहले, उन्होंने इसको लहराया था। उस पल पूरे देश में एक साथ खुशी के आंसू और जीत का गर्व था दोस्तों। और तिरंगे के रंगों का मतलब केसरी यानी कि शौर्य और बलिदान, सफ़ेद यानी कि शांति और सच्चाई, और हरा उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और बीच का जो अशोक चक्र है ना दोस्तों, वो न्याय और गति का प्रतीक है। चलिए सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गाना।

वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। दोस्तों, हमारे देश की आज़ादी की कहानी वीरों के बलिदान के बिना अधूरी है। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी सिर्फ इसलिए कि हम आज़ाद हवा में सांस ले सकें। और एक फैक्ट ये भी रहा है दोस्तों कि भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने अपनी जिंदगी देश के

दोस्तों आप सुन रहे हैं 5VBI 103.1 FM, साथ में मैं हूँ रिचा और शाम 5 बजे एडलेट टाइम मैं आपके साथ होती हूँ फ्राइडे विद रिचा शो में। और आज हम भारत का स्वतंत्रता दिवस इस शो में मना रहे हैं। सुनवा रही हूँ मैं आपको बहुत ही देशभक्ति के प्यारे प्यारे गाने, जोश वाले गाने, शानदार गाने। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1947 में भारत की लिटरेसी रेट सिर्फ 12% थी और आज 77% से ज्यादा साक्षर हैं हम लोग। जी हाँ, तब सिर्फ 55 करोड़ लोग भारत में रहते थे और आज हम 140 करोड़ से ज्यादा हैं। और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, स्पेस, हर फील्ड में भारत आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ तरक्की का सफर नहीं है दोस्तों, ये एक सपना सच होने वाला है। सपना सच हो गया है मैं ऐसा कहूंगी दोस्तों। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हो जाए एक और जबरदस्त सा देशभक्ति गीत।

दोस्तों, आज का दिन हमें सिर्फ गर्व नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी दिलाता है कि हम अपने देश को और बेहतर बनाएं। बस एक वादा करें कि हम अपने भारत को हमेशा दिल से प्यार करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। हम चाहे देश के और विदेश के किसी भी कोने में रहें, अपने भारत को नहीं भूलेंगे और अपने देश की मिट्टी का सदा सम्मान करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए ऋचा को इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे और कल है जन्माष्टमी दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एंजॉय, टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड विद योर फैमिली। बाय। वंदे मातरम। जय हिंद।